0: अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मानवीय व्यवहार और कुछ सामाजिक अधिकारों जैसे विषयों का उल्लेख मिलता है। कुरुश कबीर दौरुस प्रथम और दौरुस दूसरा के शासनकाल में ताजिक फारसी इतिहास एक महान सभ्यता के निर्माण का साक्षी बना। अर्खेमनी साम्राज्य विभिन्न जातियों, राष्ट्रों, धर्मों और संस्कृतियों के सहयोग तथा से अस्तित्व पर आधारित था। कुरुश कबीर ने हखामनी साम्राज्य की सीमाओं के भूमध्य सागर से लेकर खारज्म तक और वहां से इंडियन ओशन तक विस्तारित किया। इस प्रकार हखामनी साम्राज्य कुल मिलाकर 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। महान कुरुश कबीर कौन थे और उन्होंने मानव के कौन कौन से अधिकारियों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की थी? फरीदुन केंजायव की राय इस प्रकार है।
1: वो अजीक नमूद कि कुरुश कबीर असास गुजार इंपीरिया हखामनशाह बुदा खल्कोय गुनागुन से क़िदाय आलम आसिया अफ्रीका व अवरूपा रो از مصر تا شمال و شرق هندوستان متحد نموده بود. در اساس معلوماتی پدر
0: اجمتمند کروش کبیر اخیمنید سمرجا که سنسحاپک تی جنہونی ایشیا، افریقا اور یوروپ کے تینوں باغون میں پھیلی ویبھن جاتیوں اور سمودایوں کو مصر سے لے کر اتر پوروی بھارت تک ایک جو کیا تھا۔ اتہاس کے جنک مانے جانے والے کے انوسار کروش کبیر دوارا ستھاپت سمرجا میں 50 سے ادھی بھاشاؤں کی پرتینیدھی تتھا لگ بھگ 70 ویبھن جاتی سموہ نواس کرتے تھے۔ अखेमनीद का कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक परंपराओं का भी विकास हुआ। उस गौरशाली युग से आज तक अनेक मूल्यवान धरोहरों और विरासतें सुरक्षित रही है। इस संदर्भ में प्राचीन अवशेषों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे मनुष्यों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इसी कारण वे अलग अलग कालों में नए अर्थ प्राप्त करते हैं और समय बीतने के साथ के बारे में जानकारी और अधिक समृद्ध होती जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कुरुश कबीर का मानवाधिकार घोषणा पात्र एक असाधारण ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। ये अवशेष 548 ईसाई पूर्व में कुरुश द्वितीय, जिन्हें बाद में कबीर की उपाधि मिली, के आदेश पर बेबिलोनिया भाषा और किलाक्षार लिपि में मिट्टी की एक पट्टिका पर लिखा गया था। ये अवशेष लगभग 145 वर्ष पूर्व अर्थात 1879 में आधुनिक इराक के बेबिलोन क्षेत्र के पुरातात्विक अभियान के दौरान खोला गया था और आज भी उसी विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय में संरक्षित है। हालांकि कुरुश कबीर की इस ऐतिहासिक धरोहर को समझने के लिए ये जाना आवश्यक है कि ये उस युग की निशानी है जब लगभग 2500 वर्ष पहले फारस विशाल बेबिलोन साम्राज्य को अपने अधीन करने के बाद एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभर रहा था।

गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार के कई सिद्धांतों में कुरुश कबीर की घोषणा पद से मिलती जुलती कानूनी और नीति धारणाएं आधुनिक रूप से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त कुरुश कबीर के मानवाधिकार घोषणा पत्र में अनेक कानूनी नैतिक और मानवीय विचारों का उल्लेख मिलता है। ये घोषणा पत्र हमें उस इतिहास क्षण पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जब एक फारसी शासक ने कुछ ऐतिहासिक परंपराओं क्षेत्रीय सभ्यताओं से जोड़ती है यहूदियों को स्वतंत्रता प्रदान की और उन्हें अपने पवित्र स्थानों पर लौटने अपने मंदिरों के पूर्ण निर्माण तथा धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की अनुमति दी। इससे धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के सिद्धांतों के ऐतिहासिक उदाहरणों में गिना जाता है। जब वर्ष 2010 में कुरुश कबीर को प्रदर्शनी के लिए भेजा गया तब बड़ी संख्या में मुस्लिम ईसाई जरतुष्ट्र धर्म बलांदी यहूदी तथा अन्य धर्मों के लोगों ने इसी निकात से देखा और ये व्यापक चर्चा का विषय बना। अब ये भी उल्लेखनीय है कि आपने एक संदेश में देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए ताजिकों के सहयोग का भी उल्लेख किया गया। यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक को न्यायपूर्ण दस्तावेज की 2550वीं वर्षगांठ का मानव इतिहास में प्राकृतिक मानवाधिकारों के पहले घोषणा के रूप में समानतापूर्वक मनाया जाना एक समयोचित और शुभ कदम है, क्योंकि ये दस्तावेज इस बात का प्रतीक है कि ताजिक लोग उच्च मानवतावादी संस्कृति के धनी है और विश्व सभ्यता के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूनेस्को के स्तर पर कुरुश कबीर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के 2525वीं वर्षगांठ का आयोजन किशोरों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में देशभक्ति, आत्मा पहचान तथा अपनी भूमि और मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। ये उल्लेखनीय है कि 6 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 45वीं महासम्मेलन के दौरान कुरुश की विरासत सांस्कृतिक विविधता के कारों के प्रारंभिक घोषणा शीर्षक से एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी जो आपने सुना है। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहे, हमारे रेडियो के साथ रहे।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीदी रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। इस घंटे की मुख्य खबरें। सिरोजुद्दीन मुहरीदीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एशिया के लिए निवारक कूटनीतिक क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख के साथ मुलाकात की। शरफ शेरली जोदा ने इंटर पोलियामेंट्रे यूनियन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। बाकू में ताजिकिस्तान और अजरबैजान के बीच वस्तुकला और निर्माण क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। ये और दूसरी खबरें हमारे इस घंटे में। सिरोजुद्दीन मुहरीदीन ने 21 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एशिया के लिए निर्वाह कूटनीतिक क्षेत्र केंद्र के प्रमुख काखा इमनादजे के साथ मुलाकात की। ताजिकिस्तान का विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत के दौरान ताजिकिस्तान और इस क्षेत्र केंद्र के बीच सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने, सतत विकास को सुनिश्चित करने तथा मध्य एशियाई देशों के बीच पानी, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। चालू साल के 20 मई को स्विट्जरलैंड में ताजिकिस्तान के राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताजिकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि शरफ शेरलीजोदा की मुलाकात मार्टिन चुनगोंग से हुई, जो अंतर संसदीय संघ के महासचिव है। ताजिकिस्तान का स्विट्जरलैंड में स्थित दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अंतर संसदीय सहयोग, जल और जलवायु से जुड़े मुद्दों तथा ताजिकिस्तान और अंतर संसदीय के बीच संसदीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। इसके अलावा मार्टिन चुनगोंग की भागीदारी पर भी विचार विमर्श हुआ, जो सतत विकास के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय कार्यदर्शा के कायम बयान हेतु आयोजित चौथे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तावित है। बाकू में ताजिकिस्तान और अजरबैजान के बीच निर्माण, वस्तुकला और शहरी विकास के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ये चर्चा निज़ोम मिर्ज़ोज़ोदा की मुलाकात में हुई, जिसमें उन्होंने दौलत खान फामिल ओग्लू दौलत खानोव तथा इलगार सादिखोव से बहन की है। ताजिकिस्तान सरकार के अधीन वस्तुकला और निर्माण समिति के अनुसार ये बैठक 21 मई को विश्व गहरे मंच के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद संपन्न हुई। बैठक में आधुनिक तकनीकों की उपयोग, वस्तुकला और निर्माण क्षेत्र के डिजिटलीकरण तथा अन्नत अनुभवों के आदान प्रदान पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही शहरी अवसंरचना के विकास, शहरी नियोजन प्रणाली में सुधार तथा नवाचार तकनीकों के उपयोग को लेकर भी दोनों पक्षों ने अपने विचार साझा किए। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने सहयोग को आगे और दोनों देशों के संबंधित संस्थाओं के बीच कार्य संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। स्विट्जरलैंड में तजकिस्तान के असाधारण और पूर्णकारी राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तजकिस्तान गणराज्य के प्रतिनिधि शराब शेर अली जोदा ने जिनेवा में कई देशों के राजदूतों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। तजकिस्तान का स्विट्जरलैंड में स्थित दूतावास के अनुसार इन बैठकों में विभिन्न देशों के स्थायी प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा की गई। इनमें बेनिन का राजदूत एंजेलो दान, एथियोपिया का सेगाब के बाबदक्का, नीदरलैंड का एरिका शोटेन, सऊदी अरब का अब्दुल मोहसिन मजिद बिन ओतेला, यूनाइटेड किंगडम का कुमार आयर, मार्शल आइलैंड का दोरिन इब्राहिम और कतर का हिंद अल मुफ्ता शामिल थे। मुलाकात में आपसी संबंधों को मजबूत करने, संवाद और संपर्क बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारस्परिक सहयोग और समर्थन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

0: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, आज हम प्राचीन धरोहर कार्यक्रम को कुरुश कबीर यानी महान कुरुश की मानव अधिकार घोषणा हमारे पूर्वजों के गौशाली विरासत विषय पर एक टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहें। संदेश किसान 2024 के संदेश की एक विशेषता जिसमें इमोमाली रामून द्वारा 28 दिसंबर 2024 को तश्किसान गणराज्य के मजलिस ओलीग में प्रस्तुत किया गया यूनेस्को के साथ घनिष्ठ सहयोग को मजबूत करना है। संदेश में कहा गया, तश्किसान यूनेस्को के सहयोग से राष्ट्र के महान विभूतियों के समान राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा तथा उन्हें वैश्विक मंच पर और अधिक व्यापक रूप से प्रस्तुत करने के कार्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जारी रखें। इसी संदर्भ में तश्किस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोली रामो ने गणराज्य के संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया गया कि कुरुश कबीर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की 2550वीं वर्षगांठ के आयोजन से संबंधित आवश्यक सामग्री तैयार कर यूनेस्को को प्रस्तुत करें। कुरुश कबीर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन मानव इतिहास के सबसे प्राचीन दस्तावेजों में से एक है और फारसी ताजिक जनता की राज्य व्यवस्था के विकास से संबंधित एक दुर्लभ ऐतिहासिक कानूनी स्रोत माना जाता है। इसमें उन आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर राज्य व्यवस्था का मानदंड प्रस्तुत करने का प्रयास दर्ज है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की इतिहास में स्थापित किया गया था। इस विषय पर हमारे अतिथि ताजिस्ते पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी नामर आफ्ता सदरजी नाइनी के ताजिक जनता के इतिहास विभाग के शिक्षक केंजाजोदा फरीदून ने अपने विचार इस प्रकार किए हैं।
1: मिल्लत ताजिक तारीख कदीमा व इबरत आमोज दोस्ता अज अजल बो अर्ज़िश हाय इंसान दोस्ताना।
0: ताजिक राष्ट्र प्राचीन काल से ज्ञान मानवीय खेलों सद्भावनापूर्ण व्यवहार तथा अपनी समृद्धि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। ताजिकों की अनेक अच्छी परंपराएं और रीति रिवाज मानवता की साझा आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे ही पूर्वजों की बहुमूल्य विरासतों में से एक जिसने विश्व सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मानव के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित पहली घोषणा कुरुश कबीर का मानव अधिकार घोषणा पात्र माना जाता है, क्योंकि आज पूर्व और पश्चिम में जिस न्यायपूर्ण मानवीय और विधि आधारित समाज के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है उसकी कई मूलभूत मान्यताएं इस घोषणा में व्याप्त मूल्यों से जुड़ी मानी जाती है। इस संदर्भ में लोकतंत्र के तत्व जैसे न्याय, निष्पक्षता, जनसत्ता, मानव अधिकारों की रक्षा और समाज का न्यायपूर्ण शासन विश्व समुदाय के महत्वपूर्ण विषयों में गिनी जाते हैं और कुछ विद्वान इनके ऐतिहासिक स्रोतों को महान कुरुश के मानवाधिकार घोषणा पात्र से भी जोड़ते हैं। निसंदेह आज पश्चिमी विधा शास्त्र में संविधान और अन्य कानूनी दस्तावेजों को मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की मान्यता का प्रमुख आधार माना जाता है, लेकिन इतिहास ये भी दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताओं जिसमें हमारे क्षेत्र के विरासत भी शामिल है इसमें योगदान रहा है। कुरुश कबीर के मानवाधिकार घोषणा पात्र जिसमें लगभग 2500 वर्ष पहले स्वीकार किया गया था के बारे में कहा जा सकता है कि ये इतिहास में स्वतंत्रता, सहिष्णुता और लोगों के प्रति मानवीय व्यवहार से जुड़े प्राचीन दस्तावेजों में से एक के रूप में प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मानवीय व्यवहार और कुछ सामाजिक अधिकारों जैसे विषयों का उल्लेख मिलता है। कुरुश कबीर दौरुस प्रथम और दौरुस दूसरा के शासनकाल में ताजिक फारसी इतिहास एक महान सभ्यता के निर्माण का साक्षी बना। अर्खेमनी साम्राज्य विभिन्न जातियों, राष्ट्रों, धर्मों और संस्कृतियों के सहयोग तथा से अस्तित्व पर आधारित था। कुरुश कबीर ने हखामनी साम्राज्य की सीमाओं के भूमध्य सागर से लेकर खारज्म तक और वहां से इंडियन ओशन तक विस्तारित किया। इस प्रकार हखामनी साम्राज्य کل ملا کر تین مہادوی پون ایشیا، یوروپ اور افریقہ میں پھیلا ہوا ہے۔ مہان کروش کبیر کون تھے اور انہیں مانو کے کون کون سے ادھیکاریوں ایون سوتنتراؤں کی گھوشنا کی تھی؟ فریدون کینجائیو کی رائے اس پرکار ہے۔
1: بواز ذکر نمود کہ کروش کبیر اساس گزار امپیریا ہخامنشاہ بودا، خلق های گوناگون سه قلعه عالم، آسیا، افریقا و اوروپا را از مصر تا شمال و شرق هندوستان متحد نموده بود. در اساس معلومات پدری
0: اجمتمند کروش کبیر اخیمنید سمرجا کے سنسحاپک تھے، جنہوں نے ایشیا، افریقا اور یوروپ کے تینوں باغون میں پھیلے وبھن جاتیوں اور سمودایوں کو مصر سے لے کر اتر پوروی بھارت تک ایک جٹ کیا تھا۔ اتہاس کے جنک مانے جانے والے کے انوسار کروش کبیر دوارا استھاپت سمرجا میں 50 سے ادھک بھاشاؤں کی پرتینیدھی تتھا لگ بھگ 70 وبھن جاتی سموہ نواس کرتے تھے۔ اخیمنید کا کہ سماجک، آرتھک اور راجنیتی سنستھاؤں کے ساتھ ساتھ انی سنسکرتی پرمپراؤں کا بھی وکاس ہوا۔ اس گورشالی یوگ سے آج تک انیک مولیاوان دھروہروں اور وراثتیں سرکشت رہی ہے۔ اس اندر میں پرچین اوشیشوں کی ایک مہتوپورا وشیشتا یہ ہے کہ وہ منشیوں سے ادھک سمے تک جیوت رہتے ہیں۔ اسی کارن وہ الگ الگ کالوں میں نئے آرٹ پراپت کرتے ہیں اور سمے بیتنے کے ساتھ کے بارے میں جانکاری اور ادھک سمردھ ہوتی جاتی ہے۔ اسی پریپریکشیا میں کروش کبیر کا مانو ادھیکار گھوشنا پاتر ایک اسادھارن اتہاسک دھروہر مانا جاتا ہے۔ یہ اوشیش 548 عیسائی پور میں کروش دویتی، جنہیں بعد میں کبیر کی اپادھی ملی، کے آدیش پر بیبیلونیا بادشاہ اور کلاکشار لیپی میں مٹی کی ایک پتیکا پر لکھا گیا تھا۔ یہ اوشیش لگ بھگ 145 پور ارتھات 1879 میں آدھونک عراق کے بیبیلون کشیتر کے پرتاتویت ابھیان کے دوران کھولا گیا تھا اور آج بھی اسی وشو پرسید سنگرہالے میں سنرکشت ہے۔ حالانکہ کروش کبیر کی اس اتہاسک دھروہر کو سمجھنے کے لیے یہ جانا آوشیک ہے کہ یہ اس یوگ کی نشانی ہے جب لگ بھگ 2500 وارش پہلے فارس وشال بیبیلون سمرجا کو اپنے ادھین کرنے کے بعد ایک شاکتشالی شاسن کے روپ میں ابھر رہا تھا۔
1: کروش و سبب ہوئی

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और ये है हमारे इस समय की मुख्य खबरें। जिनेवा में शराफ शेरलीजोदा के विदेशी देशों के राजदूतों के साथ बैठक आयोजित की गई। हबीबुल्ला वाहिदजोदा ने पेशरावों ने पेशवाई मिलाद के सदस्यों के साथ बैठक की। दुशांबे के शाह मंसूर जिले में विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर एक खेल उत्सव आयोजित किया गया। ये और दूसरे खबरें हमारे इस घंटे में। ताजिकिस्तान के प्रतिनिधि मानदाल ने 21 मई को बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के उन सक्षम एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया जिन्हें मादा पदार्थों के अवैध तस्करी के विरुद्ध

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।